आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान

जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियों में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: suryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी है। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों

0: बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती।

0: है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहले यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी।
0: ऐसे गाने जो चुरा लें आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
2: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती है 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।
4: और यही कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहां चले?
2: घबराने की क्या बात है?
3: बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।

0: जी हाँ, आज जिक्र है अभिनेता मोतीलाल का।
1: दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे

0: झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टून के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी।

0: अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हुए रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: किसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
1: काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थी। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की। इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं। और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए। और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं। और दिन रात बैल की तरह से काम करते हैं। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: रामप्रसाद।
1: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रावेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनी बाबू, तुम
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ?

0: मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है। और कोई चारा नहीं।
2: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आजी इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे, वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी

0: नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
0: सॉरी।
1: हाँ, मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
0: हाँ, और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे आशा ने बताया।
2: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मन।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिये की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गाँव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी

ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: मुख्य फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मोतीलाल पर। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जवाब अनजान से राहों में भटकते रहते हैं। वैसे सवालों को उनके जवाबों से मिलाने की कोशिश में ही तो हम कभी सवालों के पीछे जवाब लिए तो कभी जवाबों के लिए सवाल ढूंढने घूमते रहते हैं। पर जिंदगी भाई वो तो इन सारे सवालों जवाबों से परे होती है। तो ये है आज की इबारत और टेक्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों या कहें कि जब से सुरीला सफर शुरू हुआ है तो हम एक इबारत रोजाना फेसबुक पर पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप इस इबारत या टेक्स्ट को जानते हैं और इसमें ही कुछ शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो टाइप कीजिए फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai और आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर पहुंच जाएंगे। हिंदी में लिखा है ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और इसमें जाकर आप हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे और सुरीला सफर की पोस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी जिसके कमेंट के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे साथियों ने आज की इबारत और टेक्स्ट पढ़कर ये अंदाजा लगाया है कि कुछ सवाल जवाब की बातें होने वाली हैं। सुरीला सफर में तो खैर वैसे भी सवाल जवाब की बातें होती ही हैं, लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं कि कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ काम, सवालों से मिलता है हर बात का नाम, जिज्ञासा जगाती है ज्ञान की आस, उत्तर से खुलते हैं समझ के प्रकाश। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में गीत भी तो जरूरी हैं तो गीत आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। तो ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको अब तक नहीं मिले, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे ही नहीं गए, और कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको सबसे कठिन लगता है, और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि इसे तो पूछना ही नहीं चाहिए किसी से भी, किस तरह के जवाब आपको पसंद नहीं आते, और किस तरह का जब जवाब देने का आपका मन नहीं होता है तो किस तरह से आप टालते हैं कोई बात। तो ये सारी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं कि कभी आपसे अगर पूछा गया हो ऐसा सवाल जिसने आपको असमंजस में डाल दिया हो कि इसका जवाब क्या दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सवाल का जवाब हमें पता होता है लेकिन हम कह नहीं पाते क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। तो इस तरह की कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आई हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और कुछ फिल्मों से जुड़ी बातें भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपके मन में कई सवाल छोड़ दिए, या कोई ऐसी फिल्म भी हो सकती है जिसने आपके मन के सवालों को हल कर दिया हो कोई जवाब देकर। तो ये सारी बातें होंगी इस एक घंटे के दौरान। तब तक हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हालांकि आप सभी ने बहुत सारा अंदाजा तो लगाया है, कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, आवाज किसकी है ये पहचानिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की शुरुआत के पहले आपको बता दें आज की इबारत यानी टेक्स्ट क्या है। तो आज की इबारत है, हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी तो नहीं, हर जवाब का सवाल हो ये भी कहां जरूरी है। अब आप ही सोचिए कब कौन कहां किससे क्यों और कैसे मिलेगा और क्या कहेगा, ये कोई जानता है भला? नहीं, यह जानकर भी कुछ सवाल और

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे और हमारे साथियों ने ये भी बताया कि अनूप कुमार पर फिल्माया गया है ये गीत, तो बिल्कुल सही जवाब। वही हमारी एक साथी कहती है कि इतने सारे सवाल एक साथ धीरे धीरे पूछिए सवाल, तो भाई एक साथ इसलिए हमने सारे सवाल आपसे कह दिए क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे जवाब देते रहें, और अगर आपको चाहिए तो बीच बीच में तो हम अपना सवाल दोहराते भी रहेंगे। वैसे हमारे एक साथी ने कह दिया है कि उन्हें नापसंद आने वाले सवालों में से पुरुषों के लिए है उनकी आय और महिलाओं के लिए है उनकी आयु, ये सवाल पसंद नहीं आते। वैसे हम कहें कि तो इसका उल्टा भी हो सकता है, भाई महिलाओं से भी अब उनकी आय ना पूछी जाए और ना ही पुरुषों से पूछी जाए उनकी उम्र, तो ये सवाल तो बिल्कुल ही हमें छोड़ देने चाहिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सवालों जवाब पर तो कई फिल्मों में गीतकारों ने गीत लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार समय के अनुसार गीत शामिल किए जा रहे हैं। हाँ, तो इस गीत में पूछा गया कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, एक सवाल था, लेकिन जब कोई हमारे मन के द्वारे या कहें कि घर के द्वारे तक आ ही जाता है तो हम पूछते हैं उससे सबसे पहले एक सवाल, और जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले भी वही सवाल पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसमें किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, तो अगर आप वो गीत पहचान सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि शायद सभी के लिस्ट पे है, और इस गीत में बोल किसके हैं ये आपको हमें बताना है।

0: शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म में।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला जारी हो चुका है और कई सवाल हमने आपने पूछे, ये कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे नहीं गए, कौन सा सवाल ऐसा है जो कठिन लगता है और कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछे नहीं जाने चाहिए। अगर आपको पसंद ना हो तो आप जवाब न देने के क्या क्या तरकीबें लगाते हैं, और जब जवाब देने आपको पसंद नहीं आए तो कैसे जवाब वो थे जो आपको पसंद नहीं आते। वहीं हमने पूछा था कि कौन सी फिल्म है जिसने कई सवाल आपके मन में छोड़ दिए थे, तो इसके बारे में हमारे साथी ने लिखा है कि बागबान फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के बाद कई सारे सवाल मन में चल रहे थे। हमारे साथी लिखती है कि जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है जहाँ हर मोड़ पर एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा है, कौन कब और कहाँ हमें मिल जाए ये कोई नहीं जानता, अनजाने रास्ते, अजनबी चेहरे और अचानक होने वाली मुलाकातें ही तो इस सफर को खूबसूरत और रोमांचक बनाते हैं। बस हर पल का खुले दिल से स्वागत करें। और हमारे साथियों ने, हमने तो ये गीत सुनवाया ही, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, इससे थोड़ा ज्यादा ही संजीदा रूप में ले लिया और उन्होंने भी हमसे सवाल करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि आप कहाँ थे, क्यों नहीं आ रही थी। इसी तरह से हमारे कई साथियों ने लिखा, एक साथी ने तो लिखा कि अमर अकबर एंथनी में जो माँ होती है, छोटा बच्चा तो उनके सामने ही रोता रहता है, तो उसे पहचाना क्यों नहीं उन्होंने, क्योंकि वो उसकी आवाज तो सुन पा रही थी। भाई, इन सवालों का जवाब तो हमारे पास नहीं है फिलहाल, लेकिन हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उनका जवाब जरूर आपके पास है, ये हमें पता है। वैसे एक सवाल अब मैंने जो पूछा है आपसे, उसका भी जवाब आपने हमें दिया नहीं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। अगर आपको और भी ज्यादा हिंट चाहिए, नहीं, देखिए जवाब आ गया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत है। हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया और ये गीत हम आपको सुनवाए, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाने वाले हैं एक दूसरा गीत जिसमें आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है, और तब तक हम भी देखते हैं कि आपने क्या क्या सवाल हमारे लिए सामने रखे हैं।

जानिसा अख्तर ने लिखा इस गीत को ब्लैक कैट फिल्म से गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना और एन दत्ता का संगीत था। कार्यक्रम सुरीला सफर चल रहा है इस वक्त विविध भारती पर और आप सवालों जवाबों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही, कौन सा सवाल कठिन लगता है या कौन से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, इस पर बहुत से साथियों ने जवाब दिया कि मुझे ये सवाल हमेशा कचोटता रहता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि इस दुनिया में कोई अमीर कोई गरीब क्यों है, फिर यकायक गीत मेरे होंठों पर आ जाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। उसी तरह से हमारे साथी कह रहे हैं कि सैलरी के बारे में पूछना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं तो उसका जवाब देना भी पसंद नहीं आता। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैथ्स के जो सवाल होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, वो ना पूछे जाए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, कुछ तो डर के मारे भूल जाते थे। जब फिजिक्स वाले सर सवाल का जवाब पूछते थे तो डर के मारे नहीं बता पाते थे, आते हुए भी पता नहीं क्यों हम उनसे डरते थे, बाकी सब टीचर से मस्त आराम से बातें करते थे, मस्ती भी करते थे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने सवाल क्या पूछा, हम तो समझ नहीं पाए, तो ठीक है फिर से हम आपको सवाल तो दोहराने वाले ही हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धैर्य रखें, आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे उसे समय स्वयं जवाब देगा। वहीं हमारी एक और साथी ने लिखा कि कभी किसी स्त्री से कोई पुष्टि ही नहीं की जाती कि तुम क्या चाहती हो, मशीन के तरह घर के बाहर के काम करते रहती है परिवार के लिए, अगर आन पड़े तो कमाने भी लग जाती है, लेकिन सभी बातों में एक सवाल अधूरा ही रह जाता है कि तुम क्या चाहती हो। बिल्कुल, बहुत ही जरूरी सवाल आपने लिख भेजा, ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाता जिसे जरूर पूछना चाहिए। वहीं एक और जरूरी सवाल है जिससे रोजाना हम दो चार होते हैं। हमारे साथी ने लिखा, मुझे रोज एक ही सवाल परेशान करता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और जब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बना लो तो ये कुछ भी क्या होता है। वाकई तो ये कुछ भी क्या होता है, ये सवाल जो है इनके मन में चल रहा है, और खाने में क्या बनेगा ये भी इनके मन में हमेशा चलता रहता है। लेकिन मन में क्या चल रहा है ये तो तभी पता चलेगा जब आपका मनचाहा गीत हमारे गीत के साथ

गैमलर फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें कह रहे हैं और क्या क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए उन पर हमारे साथी कह रहे हैं कि जब किन का जवाब नहीं देते बनता है। इस पर भी हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई जब पत्नी पूछे कि क्या बना कैसी लग रही हूँ तो उसका जवाब देना बड़ा कठिन होता है। वहीं वो कह रहे हैं कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस प्रश्न का जवाब भी अभी तक नहीं मिला। तो कुछ मुश्किल सवाल जवाब के बारे में तो उन्होंने लिखा। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे दो बेटे हैं और हरदम पूछा जाता है कि लाडला कौन है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि माँ को अपनी संतान एक समान प्रिय होती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब उम्र पूछा जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी अपनी उम्र खासतौर से लड़कियों से अगर पूछी जाती है।

है तो ये सवाल सही नहीं लगते। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कौन सा बच्चा प्यारा है जब पूछा जाए, या किसी ज्यादा भाई बहन से ज्यादा आपकी किससे ज्यादा दोस्ती है ये पूछा जाए, या पूछा जाए कि कौन से गाने आपको पसंद है, लता जी के, रफी जी के, या किसी भी इस तरह से गायकों के नाम लेकर पूछा जाता है, या कौन सा फिल्मी गाना अधिक पसंद है, इस तरह के जो सवाल हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में इस तरह के सवाल जवाब, यानी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये बहुत होते हैं। दुख सुख के सुर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि वो है जो ये समझ सके कि कुछ चीजों को वक्त के भरोसे छोड़ देना और इन सुरेले सफर का मजा लेना ही जिंदगी है। ना इब्तिदा की खबर है, ना इंतहा का पता है, जिंदगी बस एक सुरीला सफर है और तू ही मेरी रहनुमा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से जवाब हमारे साथी लिख भेज रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि वो कौन सा ऐसा जवाब है, किस तरह का जवाब है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। या एक और बात आप बता सकते हैं ये कि अगर खुद से कोई सवाल पूछना हो, क्योंकि कई बार हमें खुद से भी कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, इस तरह के कई सवाल होते हैं, तो अगर आप खुद से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल क्या होगा। मान लीजिए कि आज ही आपको अगर अपने आप से कोई सवाल पूछना है तो ये बताइए कि वो सवाल क्या होगा, और तब तक हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुना रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी देर हो गई हम सभी को मिले हुए, लेकिन हमने तो आपसे आपका हाल ही नहीं पूछा। तो हाल पूछ रहा है ये गीत और आपको सुनवा रहे हैं, हमें ये बताइए कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन थे।

जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कोई भी बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मम्मी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्या पापा, वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि एक सवाल पूछ ही लेता हूँ, जन्म के समय आत्मा आई थी या देह परिवर्तन के समय आत्मा ही जाती है, तो ये सवाल है कि मन आया किधर से? और इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, और इस फहरिस्त में हमारे एक साथी ने, उन्होंने अंग्रेजी में अपना जवाब लिखा है तो उसे हम हिंदी अनुवाद करके आपको सुनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके माता पिता से या उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी कब करने वाले हैं, या जो नई नई इनकी शादी होती है, नविवाहिता होती है, उनकी माओं से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी बेटी कब माँ बनेगी, या फिर उनकी शादी, किसी की शादी से संबंधित सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर उन्हें बुलाया गया है तो भी किस तरह से बातें नहीं पूछनी चाहिए, कि कभी भी कोई अगर कोई गर्भवती भी है तो उससे भी ये नहीं पूछना चाहिए कि गुड न्यूज कब दे रहे हैं, और इस तरह की बातें क्योंकि परेशान करती हैं जिनको भी, जिनकी भी संबंधित होती है परेशानी, उन्हें परेशान करती हैं, इसलिए आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए, वो कह रहे हैं कि एक सवाल पूछ रहा हूं कि आसमान में उड़ने वाले बादल इतना सारा पानी कैसे लेकर उड़ सकते हैं, जिनमें पानी के टैंकर होते हैं।

जिसमें शहर और गांव में बरसते हैं और पूरा गांव शहर तर बतर हो जाता है। विज्ञान का सवाल है, जवाब हो तो जरूर देना। भाई इसका जवाब इतना बड़ा है कि इसका जवाब तो आपको विज्ञान की किताब का एक पन्ना भेजकर ही हमारे साथी दे देंगे। तो जिस भी साथी के पास वो पन्ना है वो उन्हें जरूर भेजें। और हमारे एक और साथी कह रही है कि कौन सा सवाल खुद से पूछना चाहेंगे। उसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह के सवाल वो पूछना चाहती है खुद से। तो हम उन्हें बस ये जवाब देना चाहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और खुद को लेकर थोड़ा नर्म पड़ना चाहिए, तो इससे आप जरूर अपने कामों को पूरी तरह से कर सकेंगे। और खुद को जज करना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए और अपने आप ये सोचिए कि आप जरूर कर पाएंगी उन कामों को, शायद थोड़ी थकान हो, तो इस तरह से इस जवाब से शायद आपको कुछ आराम मिले और कुछ आराम आपको इस गीत से भी मिल सकता है। तो सुनिए ये गीत और हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और लिखा किसने है।

0: चंद्रसेना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिल

0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें बात हो रही है सवालों और जवाबों की। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते, या बहुत से ऐसे सवाल जिनसे हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे ही ना, या जिनके जवाब हम देना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आपने लिखा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं क्या किसी के सवाल का जवाब दूंगी, मेरी तो फोन की बैटरी जवाब दे चुकी, बिजली धोखा दे गई और फोन की मानो चंद सांसें गिनती की रह गई और अन्य कोई साधन भी उपलब्ध नहीं कि फोन चार्ज हो सके। बस अब श्रवण कुमार बनेंगे वक्ता बाबू तो बनने से रहे, सुनेंगे रेडियो सेट पर शेष प्रोग्राम। शुक्र है रेडियो की बैटरी अपने पूरे शबाब पर है। चलिए अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल तो हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल के समय में गणित का सवाल जब सबसे खतरनाक लगता था, 8वीं क्लास में 0 नंबर मिले थे और बहुत पिटाई हुई थी। उसके बाद पूरी नौकरी में गणित का ही काम करना पड़ा, लेकिन गणित आज भी नहीं आती। भाई तो हमारा सवाल तो यही कि गणित नहीं आती, फिर भी गणित का इतना काम कैसे कर लेते हैं आप। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज आपके सवाल जवाब ने बचपन में पिताजी की मार याद दिला दी है। जब वो गणित पढ़ाते थे तो सवाल का जवाब पता होता था, लेकिन उनके आगे जुबान नहीं खुलती थी। जब एक थप्पड़ पड़ते तो झट से जवाब देता था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब कोई घर का सदस्य बाहर जा रहा हो किसी महत्वपूर्ण काम से, तो कहां जा रहे हो, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। और हमारी एक और साथी ने कहा, अगर मैं खुद से सवाल करती हूँ कि मैं सबके लिए जीती हूँ, खुद के लिए कब जी पाऊंगी, जिसमें कुछ पल मेरे बिल्कुल अपने हों, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। भाई इस इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ वक्त अपने लिए निकालने लगेंगी तो वाकई घर के सदस्यों को भी इसकी आदत होती जाएगी और आप वाकई अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगी। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये गीत, और ये गीत सुनकर हमें आप बताइए कि किसका संगीत है, फिल्म का नाम भी।

बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और अर्चना की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की भारत एक ऐसे तथ्य को उजागर करती है जिसकी तलाश में सारी जिंदगी हम व्यतीत कर लेते हैं और मिलकर भी हमें वो चीज नहीं मिलती। हम पूरी जिंदगी या तो अपने सवालों के लिए सही जवाब ढूंढते रहते हैं या फिर मिले हुए अनुभवों को सही साबित करने के लिए नए सवाल खड़े करते रहते हैं। राहों में इन सवालों का भटकना भी इस सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाल और जवाब के ताने बाने से इंसानी जहन की कश्मकश को बड़े ही सरल मगर गहरे शब्दों में पिरोया है। वही मारी कौर साथी कहती कि सवाल जवाब तो जब तक जीवन है चलते ही रहेंगे। हाँ, कुछ सवाल के जवाब हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं। दरअसल कभी कभी किसी सवाल का जवाब ना मिले उसी में बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी में फिर रोमांच ही खत्म हो जाए। जिंदगी के सवाल जवाब को जितनी गंभीरता से लोगे उतनी ही पीड़ा होगी। जीवन का सबसे निश्चल पक्ष है जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करो मगर सवाल जवाब भी करते रहना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में जिज्ञासा बनी रहती है। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आज की भारत जीवन केवल सवालों और जवाबों का गणित नहीं है। जीवन में कई मुलाकातें, घटनाएं और रिश्ते बिना किसी पूर्व योजना के बनते हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कई उत्तर समय के साथ स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हर बात को तर्क और उत्तरों में बांधने के बजाय जीवन के रहस्यों, संयोगों और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। एक और साथी कहते हैं, सवालों जवाबों में उलझी जिंदगी आज आखिर मुकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम सवाल अधूरे रह गए जिनके जवाब हमने खोजे ही नहीं और अपनी जिंदगी को तबाह करते चले गए। कुछ मजबूरियां थी जो कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर सवाल जवाब में उलझे तो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो सकता था। आज सवाल जवाब की बातें चली तो वो दिन याद आ गए कि एक कंपनी में सर्वे सर्वा था और कुछ लोग बेईमानी में शामिल होने का भरसक प्रयास किए। मैं उनके साथ नहीं गया। आज उन्हीं बेईमान लोगों के हाथों कंपनी की बागडोर चली है और हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गए हैं। तो ये बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं जिसमें बहुत सी उनके मन की गूढ़ बातें शामिल हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि रोज अपने दिल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी वजह से आज कोई मुस्कुराया। अक्सर जवाब हाँ में होता है पर कभी कभी ना में भी होता है। तो हमारी कौर साथी ने कहा कि जिस सवाल का टेढ़ा जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई भी टेढ़ा जवाब देता है, बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब के बारे में उन्होंने लिख भेजा है कि जिंदगी वाकई इन कब कहां कैसे की उलझनों से कहीं ऊपर एक अनसुलझा खूबसूरत सफर है। कभी प्रश्न आईना बनकर हमारा असली रूप दिखाते हैं, कभी बादल बनकर मन के आकाश को नया आकार दे जाते हैं। कुछ सवालों को उत्तर चाहिए पर कुछ सवाल बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अक्सर इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की चुप्पी में जीवन की सबसे गहरी सीख छुपी होती है। अतः सवालों जवाबों के अंतहीन चक्र में उलझने के बजाय जिंदगी का असली मजा लीजिए तो अनजानी राहों की खूबसूरती को महसूस करने और हर पल को बिना किसी शर्त के जीने में ही जिंदगी का मजा छिपा है। और अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का है।

0: India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8-point fan overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Early, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Evian, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26, surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur, 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं।

0: अंक के दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओस के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक है दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का

0: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात 53 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4

0: प्रतिशत गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, तलत महमूद की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्ट एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में CID फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, OP नैयर का संगीत।

गीता दत्त की आवाज में सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म से गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

0: कोळसा आणि लिग्नाईट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांवरचा तिसरा रोड शो उद्या मुंबईत होणार आहे. केंद्रीय कोळसा आणि खाणकाम मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या रोड शोला केंद्रीय कोळसा आणि खाणकाम मंत्री जी किशन रेड्डी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहतील. भारताच्या कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पात उद्योगांचा सहभाग वाढावा या उद्देशाने कोळसा मंत्रालयाच्या संकल्पनेतला हा रोड शो नवी दिल्ली आणि हैदराबाद नंतर आता मुंबईत होत आहे. राज्यातल्या विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी उद्या मतदान होणार आहे. सर्व मतदान केंद्रांवर तयारी पूर्ण झाली असून मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांना निवडणूक साहित्याचं वितरण करण्यात आलं आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान एकदिवसीय क्रिकेट मालिकेतला दुसरा सामना आज लखनौ इथं सुरू झाला. अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. शेवटची बातमी हाती आली तेव्हा भारताच्या 22 षटकात 2 बाद 163 धावा झाल्या होत्या. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. राज्यात लागू झालेला जमीन सुधारणा कायदा देशाचं भविष्य बदलणारा ठरेल असं माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांचं प्रतिपादन. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात फुटीच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद सावंत यांनी घेतली लोकसभा सभापतींची भेट. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताचं संरक्षण सामुग्री उत्पादन 1,78,000 कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर. आणि राज्यात धार्मिक राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले 44 खटले मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 5 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: FM बँड 101.5 मेगाहर्ट्स वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर आपण देऊन केला आहे आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र. श्रोते हो, दुपारचे 3:10 झाली आहेत. पुढील कार्यक्रमाची उद्घोषणा लगेचच.
2: चटपटीत चमचमीत चवदार स्वाद ब्युटीफुल पदार्थ असो कुठलाही रुचकर बनवणार घरकुल.
3: घरकुल मसाले ज्यांच्या घरी वर्णावी त्यांची खवय्येगिरी.
2: म्हणून जेवण हवं असेल ठसकेबाज घरकुल मसाले आणा आज.
4: शेतकऱ्यांना लक्ष द्या, वेळ जाऊ देऊ नका. रवी सीड चालोटेचे सोयाबीन बियाणे उन्नती समृद्धी भरघोस उत्पादनाची खात्री मर्यादित साठा आजच घ्या.
1: FM बँड 101.5 मेगाहर्ट्स वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवरही आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र. श्रोते हो, आता मी विविध भारती प्रसारण सेवेचे कार्यक्रम सहक्षेपित करीत आहोत.
5: बाग और खेत चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए. आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है. जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं. आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे, ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी.
6: बिल्कुल सही बात है. और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचें उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है. और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए. और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी. और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था.
5: बिल्कुल बिल्कुल.
6: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी. उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेक्शन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से यह दिवस घोषित किया था. और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है. और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहां पर सूखा है, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें. और साथ में वहां पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए.
5: बिल्कुल. सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहां सूखा पड़ता है. कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत

0: नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं, जहां पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं, वो मुहिम हम चला सकते हैं
1: बिल्कुल। और
0: किसी न
1: ममता
0: किसी
1: जी,
0: रूप में।
1: जो जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते पेड़ गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है, उससे ज्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है, उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं है, बावड़ी, इस तरह की चीजों को हमें बनाना चाहिए।
0: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं,
1: जी
0: जहां पर बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ों पर, जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीजर चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया। तो वहां हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की
1: जी
0: दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियां या ड्रम। तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश
1: बिल्कुल
0: बहुत ज्यादा होती है, और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं, और पानी एकदम स्वच्छ होता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती
1: ना
0: है,
1: के
0: जो एकदम
1: बराबर होती
0: जहां
1: है,
0: पर
1: बिल्कुल
0: लोगों की पहुंच नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है।
1: बिल्कुल
0: तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो
1: बिल्कुल।
0: आंगन
1: नहीं
0: वाले घर
1: हाँ
0: हैं
1: ममता
0: वहां
1: जी,
0: हम कर सकते हैं।
1: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी बाल्टी वगैरह, रख दी, वो बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने,
0: हाँ,
1: इन सब के काम बहुत
0: बचपन
1: आता
0: में तो
1: था।
0: खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता
1: हाँ
0: था, छोटे छोटे
1: बिल्कुल
0: बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, और ये कहा जाता था कि
1: बिल्कुल
0: बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर
1: जी।
0: गया।
1: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे,
0: हाँ,
1: तो उसको
0: तो
1: इकट्ठा कर लेते
0: ये
1: थे
0: जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना
1: जी।
0: चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहां बंजर होती है, धरती जहां जहां पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहां उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
1: बिल्कुल
0: हरियाली की और पानी की।
1: बिल्कुल। और इन सब चीजों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत
0: अभी
1: जिम्मेदार
0: अभी
1: हैं।
0: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना
1: जी जी
0: मंजरी
1: जी
0: जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में,
1: जी
0: हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहां पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है
1: होता ही
0: अमूमन,
1: होता ही
0: तो
1: जी
0: वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था,
1: जी
0: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात
1: बहुत
0: है,
1: अच्छी बात है जी
0: और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने
1: जी
0: श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक
1: जी
0: पोशाक है,
1: बिल्कुल,
0: और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है,
1: बिल्कुल
0: साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप
1: बिल्कुल
0: क्या
1: खुल
0: करती
1: जाता
0: हैं?
1: है, मेरा भी खुल जाता है। और उसमें देखते हैं, तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी, और क्या कहते हैं, हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियां हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना।
0: सही बात है।
1: तो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है, इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर, और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वही राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती हैं, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक के से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंगकार जो है बेहद आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं। और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें, डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब
1: तो
0: काफी मेहनत लगती है
1: मेहनत
0: और समय
1: लगती
0: भी
1: है,
0: लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये

0: प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जॉर्जेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोमबी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोहानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके के, उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बना दी जाती है इन साड़ियों।
0: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि भरे चटकलाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की। और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है, कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है।
1: जी, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है, और बिंदिया बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्योहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है।
0: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है।
1: बिल्कुल, साज श्रृंगार तो बहुत जरूरी है
0: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना, हरे कांच की चूड़ियां, फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर ये है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम।
1: जी
0: और बात अब डायरी की चल पड़ी है।
1: बिल्कुल, डायरी
0: डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन
1: बिल्कुल
0: हल्का हो जाता है। और एक फायदा और होता है
1: जी।
0: कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी, पढ़ेगी, तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी,
1: बिल्कुल
0: और क्या माहौल था घर का। माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे, तो बच्चे सुन रहे, पढ़ रहे हैं वो, तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल।
0: और
1: डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब
0: बिल्कुल
1: कुछ उसमें रहता
0: सूखा
1: है।
0: पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ
1: दुनिया भर
0: जाती
1: की
0: हैं। अब
1: बातें।
0: हमारी एक सखी हैं जिन्होंने एक बात लिखी है। लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है, और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। वे क्यों नहीं लिखती हैं?
1: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में
0: लेकिन
1: डूब गई
0: अब
1: थी।
0: सवाल यह है कि क्यों
1: जी,
0: नहीं लिखती हैं?
1: लिखना
0: लिखना चाहिए
1: चाहिए।
0: बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं
1: बिल्कुल
0: बाहर हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में
1: जी,
0: हैं, विमान में हैं, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहां भी आप डायरी लिख सकते हैं। बोल के टाइप करने
1: बोल के
0: की भी
1: टाइप की
0: सुविधा है
1: जरूरत नहीं।
0: तो।
1: जी बिल्कुल। अरे हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटा, पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं। बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो, लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। वाकई सही बात आपने कहा है, और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है। इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिखती
0: कहा
1: हूँ।
0: जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
1: बहुत
0: है,
1: ईमानदारी से लिखी है
0: और
1: बात।
0: उसमें डायरी में
1: जी
0: जो भी बात लिखे सच लिखे,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता।
1: नहीं।
0: कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता।
1: बिल्कुल नहीं
0: सच
1: होता,
0: को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था,
1: तभी तो
0: तो
1: उस समय
0: तभी
1: का पता
0: उसका
1: चलेगा कि
0: अर्थ होता
1: आपने
0: है।
1: जीवन में क्या
0: हाँ,
1: बिताया।
0: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था। और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
1: उसका
0: तो
1: अपना ही मजा
0: जो
1: है।
0: हौले हौले जज्बात
1: जी
0: निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन ना से तो बेहतर है कुछ तो, इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं,
1: बिल्कुल। और हमारी
0: और
1: जी
0: डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था, मुझे क्लास और घर की

0: दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक
1: भाई,
0: है ना?
1: अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा
0: जी
1: मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: हमें आपको भी लिखनी चाहिए,
0: नेम लिखते
1: फिलहाल
0: हैं
1: गाना
0: जी
1: सुनना
0: जी
1: चाहिए।
0: जो

0: ये जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और
1: बिल्कुल
0: आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के
1: जी
0: लिए शुरुआत की है मनचाहे गीत की। मनचाहे
1: बिल्कुल
0: गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई, और एक दो नहीं, बहुत ढेर सारी
1: क्या
0: चिट्ठियां
1: बात
0: आनी शुरू हो गई
1: है
0: हैं, और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले। तो बस वो आंख
1: बिल्कुल
0: मूंद के उठाने वाली नौबत आ
1: टॉस
0: गई।
1: करना
0: तो
1: पड़ेगा
0: हमें
1: जी
0: चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे
1: बिल्कुल
0: ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है। जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारे मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है, और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं, तो वो जब उजागर होता है तो
1: देखिए
0: फिर वो
1: ममता
0: दोस्त नहीं रह जाती
1: जी, देखिए
0: डायरी
1: ममता जी, एक
0: फिर तो
1: ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी कभी?
1: तो ये बात तो कहीं
0: बताइए
1: नहीं
0: ना
1: जा सकती है, क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर,
1: देते,
0: राज को
1: राज
0: राज रहने दो।
1: को
0: बिल्कुल
1: राज ही
0: बिल्कुल।
1: रहने देते।
0: तो
1: लेकिन अब वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी, और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास।

0: अभी भी आती है। हाँ बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी डायरी तोहफे में देने का, तब भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं एक हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है, कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसे कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर जो घर की जरूरी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीजें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीजें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है।
0: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
1: तो
0: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
1: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभवों, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताजा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है।
0: साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए।

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं। उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था, मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी, जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी। अब तो वे डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है, लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों, लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है, उनके ना रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
0: प्रोत्साहन,
1: प्रोत्साहन,
0: डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन था आज।
1: प्रोत्साहन भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए, तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
0: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी
1: जी
0: है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों
1: दोनों
0: सकारात्मक
1: चीजें
0: नकारात्मक दो
1: जी
0: पहलू होते हैं। तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं, देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी एक के जीवन की दिशा भी बदल सकता है। हमारे साथी लिख रहे हैं, और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है।

0: जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है या प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज हर के साथ होती है।
1: प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते
0: जी
1: हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने के, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
1: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें, तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता-पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था
0: जी,
1: की जाती है ना कि
0: बच्चों का
1: आप
0: उत्साह बढ़ जाता है उस तरह
1: जी
0: से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी है, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से
0: जी
1: महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है दिव्य भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको, और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी। हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
2: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
2: हुआ करता था उस समय। और चूंकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था, तो कमेंट्री उस पे आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
2: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था।
2: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
2: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
2: तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
2: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, प्रेमधवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए।
2: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, काम मिला?
1: दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे। और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहाँ शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है। बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ

0: और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
1: सही।
0: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होते हैं।
1: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर
0: हाँ
1: बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं
0: वो,
1: पूछता।
0: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम, कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस, मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए, जो इतना बड़ा सवाल है,
1: जी।
0: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है। और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है, अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम।
1: रास्ते में है अभी तो।
0: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी
1: पढ़ाई
0: नहीं।
1: मिलती कैसे यार?
0: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
1: मन कहीं और लगता था।
0: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
1: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
0: जहाँ मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट,
1: जी
0: वो खेत खलियान वहाँ बहुत हैं, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप
1: जी
0: वहाँ अगर गए हों कभी या जाने का मौका
1: गया
0: मिले
1: नहीं है।
0: आपको, तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
1: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
0: हाँ वो है। हाँ
1: अक्कड़पन, वही जिंदगी की जो होती है अलमस्त, जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
0: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना कि सच को हम, उसका सामना करने में बड़ा कतराते हैं, कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे, हमको, कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके, हाईवे पे कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
1: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है
0: हाँ, चूंकि बात
1: आपको।
0: अब चल रही है पलों की,
1: हाँ।
0: तो एक गाना तो बन गया,
1: कौन सा है?
0: पल पल दिल के पास तुम रहते
1: क्या बात,
0: हो।
1: बहुत खूबसूरत गाना है और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्म का गाना है।
0: फिल्मों के बगैर मुझे
1: हाँ
0: नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत
1: आइए सुनते।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राज जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं। ऐसे मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे, उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं। इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद

0: 8-10 साल का रहा होगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे। तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया है यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें है ना, ये इंस्पेक्टर जहाँ यहाँ लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से, तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, देरी अब तक की बहुत बड़ी गलती की है लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
1: कोई नर्वसनेस नहीं थी,
0: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी मुझे, सिर्फ ये था यार मैं क्यों,
1: कहाँ फंस
0: ये
1: गया?
0: बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं, ये मेरे लिए भी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी 1 दिन 2 दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा, वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में, मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार ये कुछ तो हुआ है। तो वहां से वो कब पैदा हो गया, उस रस की वजह से
1: कुछ कुछ होने लगा।
0: कुछ होना, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी, मतलब सब लोग चले जाते थे यार अभी कहाँ जा रहे हो यार खेलते हैं ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, तो मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में, वहीं पे कुआं था, वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
0: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: भाई कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई। आपस में हो जाती है, बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता। कई बार ऐसा लगता है अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाक्या हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार, यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे, और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है, तो पड़े रहे मतलब घर में। और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो, फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई, और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे गए, और एड्रेस जाके वहाँ फोटो वोटो बांट दी गई। हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज है। कहाँ पे आपका क्या होगा, आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें हैं मेरे ख्याल में, हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम
0: जी,
1: कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
0: डेस्टिनी को आप मानते हैं मतलब?
1: बिल्कुल मानता हूं। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
0: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा। वहां कैसे, किसने किसी ने प्रेरित किया आपको, या कहीं से आपको जानकारी मिली?
1: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो, विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं, उतना तक समझ में नहीं आता था।

0: ये मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम एक्चुअली, पहले भी नहीं मालूम था मुझे, तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, बस बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया, और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम, मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका जो रेपिटरी चीफ हुआ करते थे, उन दोनों बड़े ही प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपिट्री में कि सुनो तुम रेपिट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे, और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया अपने मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है, तो 6 18 18,000 में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या हाँ मैं करूंगा, ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपये मिल गए, बस 1 1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं, क्या अच्छा हो गया पता नहीं, कैसे हो गया मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया, और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पे। तो 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिया, तो मैंने फट से फिर तनख्वाह हो गई 4,000, तो 12 चौक 48 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया मैंने यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं, फिर 2 साल के लिए मिल गया, और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया, फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया, और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रिपेटरी ने मुझे दिया, और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: एम के रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, डी आर अंकुर साहब, बजाज साहब, बी एम शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है
1: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर कस्सों पे फिर चलेंगे जी
0: अभी किशोर साहब का गाना है शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: मंशूरदा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बात है। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपए महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की, जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हो ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं, जो पैसे के बल पे जो चीजें होती है वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफी है। तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई। एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
0: जी,
1: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने के लिए, और वो हमारी पहली मुलाकात वहां पे हुई। और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं, दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूँ। जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का 12 आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया मॉनसून वेडिंग और 12 आने के बीच में 8-9 साल का अंतर है, इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना फोन पे ना मुलाकात हुई, और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
0: आपसे दूर हूँ,
1: आपसे मिला नहीं। और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
0: कहा दिया था आपने? बॉम्बे में।
1: बॉम्बे में।
0: अब मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो? हाँ।
1: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहां पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया, तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी, अब मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी, तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी, ओ या या या, तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता होगा कि मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए, बुलाया नहीं किसी ने, तो काफी समय बीत गया मतलब 1/2-1.5 घंटा, मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग, कि एनीवे तो थक गई थी काफी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि वो सॉरी चाय पियेंगे, मैंने हाँ

0: हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में। उस दौरान कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, जो इंटरव्यू कर रहा हूँ ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा, वही जो जिस करेक्टर को
0: हाँ
1: वही
0: बिल्कुल
1: करवाया उसी के
0: उनके पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये?
0: हाँ, ये सब बताया तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताएं कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड
1: जी
0: इजाद किया है, मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको हमको लगता रहता है ऐसे कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार, आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने दिया, यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ 3 लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा। वो तो मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए, मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब और करके, कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको।
0: कि नहीं, दैट आई नो, बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए,
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार कैमरा फेस किया?
0: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका
1: अच्छा
0: था, उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स
1: अच्छा
0: भी कर चुका है,
1: हाँ हाँ
0: भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ भोपाल एक्सप्रेस
0: हाँ ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: लेकिन वो
0: और
1: रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला। जी
0: हाँ, वो अच्छी बन पड़ी, और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं, और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म। मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको,
1: जी
0: उसमें 2 फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम। ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है, कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो
1: जी
0: फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बालन ने बनाई थी, वो काफी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन 2 फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने। गुजारा हो रहा
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे तो गाना सुनवाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना है?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है, गुलजार साहब ने कमाल लिखा है। उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे जैसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है और लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात
1: कही तो बजाय

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है बड़ा ऑफ बीट सी है सर।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानेंगे कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हट करके बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्म में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आ तो रहा है हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी,
1: उसका सीक्वल बन रहा है।

0: वेस्ट इज वेस्ट जो अगले महीने में है उसके लिए जा रहा हूँ।
1: कहाँ
0: इंग्लिश
1: पर?
0: फिल्म है, चंडीगढ़।
1: अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
0: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
1: क्या फर्क कुछ महसूस किया? आपने सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया
0: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर
1: जी।
0: काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें। वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इंप्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ। कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहाँ पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
1: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है? कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
0: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेके इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है आप?
1: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है, आज भी
0: हाँ
1: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है। टिकटें महंगी हुई हैं बावजूद इसके लोग।
0: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग। बड़ा फिल्में उठाए, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लाप, इसकी शूटिंग चल रही है। वेस्ट इज वेस्ट जो शूटिंग करूंगा मैं, और रिलीज होने वाली 2-3 फिल्में हैं। द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

कल का तार चुपके से किसी के तार से जुड़ गया। खोजती आंखों में ख्वाहिशें पनाह पाने लगीं, किसी से मुलाकात के जतन होने लगे। आंखें मिली, दिल मिल गए तो यूं दूर रहकर दिल को तकलीफ देना नाइंसाफी लगने लगी, तो फिर मिलने की दुआएं की जाने लगीं।

दिल को समझाया बगैर उनके जीना सीख ले, पर जिद्दी दिल कहां मानने वाला, वो उन्हीं के पहलू में जा बैठा। दिल को क्या खबर थी उनके संग मन्नत का धागा बांधना, मुश्किलों के पुल से गुजरना होगा। मोहब्बत से बावरे हुए मन ने न समझी ये बात और चढ़ता रहा मुश्किलों के पहाड़।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पता नहीं था जुड़ेंगे दो दिलों के तार कुछ यूं, एक साथ दिल की धड़कने गाएंगे प्रेम का तराना। पता नहीं दिल के एहसासात उनके दिल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं था मोहब्बत ये छोटा सा लफ्ज लिख देगा जिंदगी की वसीयत। पता ही नहीं था वादा होगा चांद सितारों से साथ निभाने का।

बहती नदी की मानिंद हो जाती है जिंदगी जब चलती है प्यार के बयार। जिंदगी की कश्ती हौले हौले तैरती है लेकिन वक्त की सुई तेज चलने लगती है। एक लड़की जब प्यार के रथ पर सवार होती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो सिर्फ प्यार बोलती है, प्यार उड़ती है, प्यार पहन अपने सपने

उनकी आवाज के पार भी एक आवाज थी। उनकी आवाज ने जिंदगी की तपती धूप को नरम छांव में तब्दील कर दी। उनके अल्फाज दिल की घाटी में चंचल नदी की तरह उतरने लगे। आसमान की तरह उनका कद आंखों में बस गया। बस उस रोज से होठों पर तिरता है मोहब्बत का नगमा।

सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वानंद किरकिरे के लिखे गीत से, जिसकी धुन बनाई है शांतनु मित्रा ने। आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

दो जासूस, ये नाम है फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गायक कलाकार लता मंगेशकर, शैलेंद्र और साथी गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी

0: मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: खामोशी द म्यूजिकल। अब सुनिए इस फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में। जतिन ललित के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार को सोहनी महिवाल फिल्म में। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने।
3: खुदा

0: थे आशा भोसले और शब्बीर कुमार, फिल्म थी सोहनी महिवाल।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका।

0: पहली जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: अकेले हम अकेले तुम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। तर्ज बनाई है अनु मलिक ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने।

तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी

0: इसलिए वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलू हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलू जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। पुणे साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस रेल्वेला माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सलीम सुलेमन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए श्रेया घोषाल का गाया गीत बोल, अमिताभ भट्टाचार्य के, फिल्म का नाम बैंड बाजा बारात।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

रहे था कार्यक्रम तराने नए पुराने। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही पलों बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम होगा 7:00। इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग ये कार्यक्रम सुनेगा, समय होगा 7:45 पर।

रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे नाटिका मेन्यू कार्ड, मूल कहानी ओ हेनरी, हिंदी नाट रूपांतर मुरली मनोहर जोशी, निर्देशन मुख्तार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता मोतीलाल पर। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी मंदाकिनी जोशी। ढलती जाए रात, रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। सुबह 6:45 पर संगीत सरिता में कल आप सुनेंगे श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। कलाकार होंगे वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। कल आप इसका दूसरा भाग सुनेंगे, साथ ही इसका पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। समय होता है सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:15 पर। लेखक हैं मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसका पुनः प्रसारण सुनेगा दोपहर 2 बजे। नए फिल्मी गाने हम रोज लेकर आते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। कार्यक्रम होता है चित्रलोक।

आज के फनकार। कल ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन पर। इसका प्रसारण होता है सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। 11 बजे लेकर आएंगे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। 1 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

सदाबहार नगमे लेकर आएंगे 2:30 पर। दोपहर 3 बजे बहने सुनेंगी सखी सहेली कार्यक्रम। शाम 4 बजे पिटारा में गीतों भरी कहानी होगी मेरी मकान मालकिन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में नाजनीन की लिखी झलकी सुनेगा पुरातत्व के तत्व। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगे राजल अशोक। ढलती जाए रात 10:30 पर और रंग तरंग रात 11 बजे।

अभी आपने लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचना सुनी। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। अब सुनिए आक्रोश फिल्म का भजन वंदना खांडेकर के स्वर में। वसंत देव के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अजीत बर्मन ने।

0: गजतत्वाद्य प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: श्रोताओं, आज हम गज से बजाए जाने वाले एक और वाद्य दिलरुबा पर बात करेंगे। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुगलकालीन वाद्य है, किंतु मुगलकालीन वाद्यों में इस नाम का अथवा इसके स्वरूप से साम्य रखने वाला कोई वाद्य दिखाई नहीं देता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस वाद्य की रचना आधुनिक काल में ही की गई है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का आधार सारंगी मानते हैं। सुविधा युक्त गजवाद्य की आवश्यकता होने के कारण इसका निर्माण किया गया। यह भी संभव है कि इसराज की मृदु ध्वनि को गंभीर बनाने की दृष्टि से इसराज में ही कुछ परिवर्तन किए गए हों, फलस्वरूप दिलरुबा वाद्य की उत्पत्ति हुई हो। इस संभावना को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रचलित ताउस वाद्य के नीचे लगे मयूर वाले भाग को हटाकर उसके स्थान पर सारंगी का मंथान अर्थात नीचे वाला भाग लगाकर इसका निर्माण किया गया हो। उत्पत्ति का कारण जो भी रहा हो, किंतु यह सत्य है कि दिलरुबा वाद्य सितार और सारंगी का मिश्रित रूप है। दिलरुबा वाद्य 3 आकार में प्रचलित है। आकार के अनुसार ही कुंडी और दांड का नाप रखा जाता है। दिलरुबा में 19 पर्दे होते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सरकाया भी जा सकता है। इसमें मुख्य 4 तार होते हैं। कुछ दिलरुबा में 6 तार भी लगाए जाते हैं। इसमें 20 अथवा 22 तरबों को लगाया जाता है, जिन्हें राग के अनुसार मिलाते हैं। कुछ कलाकार तरबों को अचल थाट में रखते हैं। दिलरुबा के तार अलग अलग पद्धति से मिलाकर वादन करने का प्रचलन रहा है। फिर भी सामान्यतः इसके बाज के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम में, इसके बाद के फोलाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात के पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम पीतल के तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाते हैं। तरबो हेतु पीतल के तार प्रयुक्त करते हैं। ऊपर आड़ के पास तरब के 5 तार तथा शेष तरब के तार दांड के बाजू में लगाने का प्रचलन है। कुछ कलाकार इसको घुटने पर रखकर या गोद में रखकर बजाते हैं। इसकी कुंडी वाला भाग नीचे रहता है। दाहिने हाथ में गज को पकड़ा जाता है। यह गज तारों पर घर्षण करते हैं। दांड के पीछे की ओर बाएं हाथ का अंगूठा रखा जाता है और आगे की तरफ से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से कर्ण, खटका, मुरकी, गमक और घसीट के साथ विभिन्न स्वर निकाले जाते हैं। दिलरुबा के नाम से स्पष्ट है कि हृदय को मोहित करने वाला एक सुंदर, मधुर और आकर्षक वाद्य है, किंतु दुख की बात है कि अब इसका प्रचलन कम होते जा रहा है। अब इसे दुर्लभ वाद्यों की श्रेणी में रखा जाता है। लगभग 50 वर्षों पूर्व दिलरुबा पर पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड का साउंड बॉक्स व हॉर्न लगाकर तार शहनाई वाद्य की रचना की गई। अब हम श्री विनायक बोरा का तार शहनाई वादन सुनते हैं।

अभी आप श्री विनायक वोरा से तार शहनाई पर बजाया राग अहीर ललित सुन रहे थे। गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी अंतिम कड़ी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा है, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

ये है विद भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलजार के, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: अभी आपने राग अलहैया बिलावल पर आधारित परिचय फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एला कार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर।

0: जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह

0: शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
1: ओहो, ये मेन्यू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
2: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर ख़त्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
1: तो क्या सभी मेज़ के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं?
2: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
1: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
2: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
1: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
2: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
1: बाय बाय। बैरा।
3: यस मैडम, कमिंग।
4: क्या खाइएगा?
1: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
4: ओके मैडम।
1: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद।
5: हेलो सर।
6: यस मैडम।
1: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
6: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
1: देखिए, ये आपके यहाँ का मेनू है, मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मेनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
6: ओह, थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं, मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीज़ें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मेनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा।
1: तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी।
6: ओह, वंडरफुल वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ओके।
1: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
7: राष्ट्रीय बातम्या देता है। ठळक बातम्या। विकसनशील देशांच्या मदतीसाठी वित्तीय यंत्रणा तयार करण्याची गरज असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं G7 परिषदेत प्रतिपादन। इराणसोबत युद्धबंदी करार अद्याप पूर्ण झालेला नाही, गरज पडली तर पुन्हा इराणवर हल्ला करू असा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा। रेल्वे मंत्र्यांच्या हस्ते पुण्यात विविध विकास कामांचं लोकार्पण आणि पायाभरणी। पुणे साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस रेल्वेचा प्रारंभ। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचं प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या कुठल्याही बंडखोर गटाला मान्यता देऊ नये अशी पक्षाची लोकसभेच्या सभापतींना विनंती। आणि लखनौ इथं सुरू असलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारताचं अफगाणिस्तान पुढे विजयासाठी 403 धावांचं आव्हान। फ्रान्समध्ये एव्हियन इथं G7 परिषदेत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं भाषण झालं। सर्वांच्या फायद्यासाठी समतोल, समावेशक आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन या विषयावर बोलताना प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखित केलं की विकसनशील देशांच्या मदतीसाठी वित्तीय यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे। जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रेडरिक मर्ज यांच्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची द्विपक्षीय चर्चा झाली। व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण सामग्री, माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर संबंधित क्षेत्रांमध्ये उभयपक्षी संबंध दृढ करण्यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये सहमती झाली। मोदी यांनी आज युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

अब सुनिए रूप कुमार राठौर के आवाज में अग्निपथ फिल्म का गीत। अजय अतुल का संगीत है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के

0: इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार मयूरपुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की

0: सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर

0: जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की।

0: मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज़ एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it.

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने

0: ने कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
1: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या? दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया। ए देवदास, तुम कहाँ चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।
2: नौकरी चाहते हो?
3: मुझे नौकरी मिलेगी।
2: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
1: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की। इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं 3rd class passenger हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो 1st class में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3rd class के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: हाँ हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों में

0: जिगरी दोस्त, क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
1: 125 रुपए।
0: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
1: 50 रुपए।
0: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं। और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
1: राम प्रसाद।
0: मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: सन 1954 में एचएस रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनिंदा हो तुम,
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबरें हैं?
2: खबर बस यही है कि जिंदा हैं। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हैं?
2: ये भी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बचाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ये इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गाना खुशी हो रही तुम?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्ही ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुसी तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

सुना रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना।

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाए।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमईएम में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़

0: करोड़ रुपए की लागत से सोमदाने चखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली।

0: मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
1: दो प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। थर्ड प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर फोर्थ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।